0: ਲਗਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696 ਓਇਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 587-617-4696
1: नमस्कार सलाम याली मदद सत श्री अकाल वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो सुर संगम ओनली ऑन 94.7 FM पर मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका अपने इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे दोस्तों कैलगरी में जो मौसम है वो अगेन तब्दील होता हुआ और हम लोग ठंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो प्लीज जितना मौसम को आप एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करें बाहर निकलें जितनी कैंपिंग बची है उसको जरूर करें बच्चों को बाहर लेके जाएं क्योंकि फिर अगले कुछ महीने अंदर ही अंदर है घर के और बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्टिविटीज करने के लिए बट स्टिल आर कैलगरी इज वेरी डिफरेंट सो वी गेट गुड डेज इन विंटर्स ऑल्सो वेयर वी कैन गो आउटसाइड एंड एंजॉय लेकिन अभी जो अगले दो वीक हैं कैलगरी के अंदर थोड़े अच्छे लग रहे हैं लेकिन बारिश होने की भी संभावना है तो अगले 14 दिन में मौसम जो रहेगा वो 10 डिग्री 16 डिग्री 20 डिग्री 21 डिग्री 22 डिग्री तक जाएगा लेकिन शाम को जो तापमान है वो सिंगल डिजिट में हो जाएगा 2, 3, 4, 6, 7 तो अपना ध्यान रखें और स्पेशली जो मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें क्योंकि इस समय जब वेदर चेंज होता है तो गाड़ियों की जो मेंटेनेंस है वो बहुत जरूरी है मेक श्योर दैट योर ब्रेक्स आर वर्किंग यू हैव हीटिंग एंड गुड बैटरीज बिकॉज ठंड के अंदर बैटरी जो है वो बहुत जरूरी रहती है हम बैटरी की बात कर रहे हैं तो हर इंसान के अंदर भी एक बैटरी होती है जो आपकी बॉडी है बॉडी के अंदर आपकी हड्डियां हैं बहुत सारे नर्व्स हैं और बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कई बार समझ में नहीं आती कभी सरदर्द होता है कभी खांसी जुकाम हो जाता है कभी बुखार आ जाता है कभी जोड़ों में दर्द होता है तो हिंदुस्तान में एशियंट इंडिया जिसको कहते हैं 5000 साल से भी पहले मुझे एग्जैक्टली तो मालूम नहीं लेकिन एक एक्सरसाइज इजाद की गई या एक एक्सरसाइज अमल में लाई गई या लोगों ने उसको करना शुरू करा जिसको कहते हैं योगा और योगा को लेके बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं योगा करने के लिए जब वो योगा वेस्टर्नाइज हुआ तो उसके अंदर लाफ्टर योगा हीट योगा बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए लेकिन जो ओरिजिनल योगा है वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही मैं कह सकता हूं एक मेडिसिन है आपकी बॉडी के लिए और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसको अच्छी तरह से आपके लिए लेकर आ पाते हैं या आपको उसका ज्ञान देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि योगा को किस तरह से करा जाए आपकी बॉडी को फिट करने के लिए तो एक ऐसी ही अमेजिंग क्लास या एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जो है योग्स रिट्रीट और इसको जो कंडक्ट कर रही हैं वो हमारी हैं बहुत ही प्यारी मनु मिश्रा जी जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो आपको थोड़ा बताएंगे कि ये योगा की जो इवेंट होने जा रहा है इसमें क्या है और आप इसका कैसे इसमें आकर फायदा उठा सकते हैं तो आइए मनु जी का स्वागत करें और जानें कि क्या होने जा रहा है इस योग रिट्रीट में मनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में
2: थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर
1: नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने लिस्नर्स तक लेके जाने के लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन अगेन योग्स रिट्रीट इस इवेंट का नाम है और मनोज जी जैसे मैं बात कर रहा था कि एक बहुत एशियंट और बहुत पुरानी ये शैली है जो योगा है तो पहले तो ये बताइए कि योगा जो है वो इंसान को किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है किस तरह से बेनिफिट्स देती है
2: बहुत अनगिनत तरीके
1: अच्छा
2: मतलब अनगिनत फायदे

0: फिक्स चाहिए तो आप योग करिए, धीरे धीरे धीरे करके वो वैनिश हो जाएगा। तो सिर दर्द का मैंने बताया,
1: अब बुखार या मेरे को कहीं मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, क्या इसमें भी योग हेल्प करता है?
0: बुखार में आपको नहीं हेल्प करेगा।
1: अच्छा,
0: लेकिन बाकी सारे दर्द को ये देख सकता है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है डॉक्टर का। डॉक्टर के साथ साथ करना है आपको ये
1: जी।
0: और उसके साथ आपको स्ट्रेंथनिंग करनी है। आप हमारे जो ओल्ड साधु लोग हैं, जो सेजेस जो हमारे हिमालयाज में रहते थे
1: जी,
0: उन आप अभी आपने शायद फॉलो अगर किया होगा ये क्या था महाकुंभ
1: जी।
0: महाकुंभ में आप देखेंगे तो इतने पुराने पुराने साधु आते हैं,
1: वो स्पेशली
0: हाँ वो साधु इतनी अच्छी अच्छी पोजेस करते हैं जो नॉर्मल योगा वाले नहीं कर पाते, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी वो जो पोजेस करते हैं। तो वो अपनी बॉडी को कैसे वहां पर ठीक रखते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम उनका कैसे होता है, वो सब योगा करते हैं। तो मतलब योगा हाँ बीमारियां तुरंत नहीं ठीक कर, जैसे बुखार है वो तुरंत नहीं ठीक करेगा, लेकिन एक बार आप हो गया, आपको फीवर हो गया, उसकी रिकवरी अच्छी कराएगा, आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ये करेगा। किसी चीज का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक एडेड बेनिफिट है आपकी बॉडी के लिए।
1: क्या योग से हम किसी चीज को या किसी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: मेंस के केस में,
1: अच्छा
0: मेंस के केस में, विमेंस के केस में, दोनों के केस में, मेंस को जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ
1: जी जी बिल्कुल,
0: वो सिर्फ योगा करके आप उसको दूर रख सकते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, और बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी है
1: जी।
0: अगर आप वो रेगुलर करते रहें
1: जी,
0: तो वो आप उससे बच सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ऑन्कोलॉजी योगा में ये बातें यहाँ पे, इसीलिए कैंसर ऑन्कोलॉजी योगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे मतलब ज्यादा वैल्यूएबल, उन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च किया है, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज में यूएस एंड कनाडा ने किया है
1: जी।
0: तो ये दोनों कंट्रीज इसीलिए ऑन्कोलॉजी योगा का केस मतलब पे पूरा प्रॉपर इनका स्टडी मटेरियल है, तो मैंने वो ऑन्कोलॉजी योगा कोर्स भी किया हुआ है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन अ वे कह सकते हैं कि अगर हम अपने पुराने वेदों में जाएं, पुराणों में जाएं, तो पहले ये एलोपैथिक मेडिसिन तो नहीं थी, सब आयुर्वेदिक और योगा के ही कुछ चीजें थी जिसकी वजह से लोग अपना इलाज करते थे, या अगर आप जो नॉर्मल पब्लिक थी वो इसके थ्रू ही अपने आप को ठीक कर पाती थी। और आपने बिल्कुल सही कहा, महाकुंभ के मौके पे काफी चैनल्स ने उसको कवर किया, जो न्यूज चैनल्स थे और कुछ यूट्यूबर्स भी थे जो गए, जिनकी वजह से जो स्पेशली नागा साधु हैं उनके कई इंटरव्यूज देखने को मिले। तो बहुत अचंभा होता है क्योंकि इतनी ठंड में वो लोग सिर्फ बहुत ही कम कपड़े पहन के वहां पर अपना ध्यान करते हैं और गुफाओं में रहते हैं और एक डिफरेंट शैली का जीवन जो है उनका होता है, लेकिन उन्होंने भी यही जो मुझे ध्यान है यही बात हुई थी कि जो योग है, योगा है, वो हम अपनी समाधि में रहते हैं और उसकी वजह से ही ना हमें ठंड लगती है। हाँ, सालों का उसमें अध्ययन लगता है, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सर्दी, गर्मी, दोपहर, ठंड, शाम, इसका कोई असर नहीं होता और हम बिना खाए पिए भी काफी दिन रह सकते हैं, जबकि हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत कम दिन ऐसे हैं जो खाए बिना या पिए बिना रह सकता है। तो वाकई एक बहुत बढ़िया एक शैली है जिसको अपनाना बहुत जरूरी है। तो अब आप एक इवेंट लेके आ रही हैं, एक क्लिनिक लेके आ रही हैं, इसके बारे में बताएं कि ये क्या होने वाला है। 3 दिन आपने हमें बताया, 18, 19, 20 सितंबर, ये 3 दिन का आपका कैंप रहेगा, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं।
0: मैं जब यहाँ पे नई नई आई थी
1: जी,
0: 2015-16 की बात है
1: जी,
0: तो सब कुछ मैं बहुत ढूंढ रही थी कि काश कोई कैलगरी में रिट्रीट हो, और मुझे तब मुझे रिट्रीट वर्ड तक नहीं पता था मैं सोचती थी कहीं जा करके कर सकें, एक दो दिन रह सकें, एक ब्रेक मिल जाए, ऐसे करके मैंने इतना ढूंढा था। और जब आप नए नए आए रहते हैं ना, तो ऐसा तो होता नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हो, लेकिन जॉब नहीं रहते तो आप दिमाग मतलब आपका बहुत थका हारा सा होता है
1: जी।
0: तब मुझे लगता था काश कुछ होता और मैं चली जाती, तो तब मैंने बहुत ढूंढा था तो नहीं मिला मुझे। तो मेरा था कि मैं जब भी योगा करूंगी, जब मैं तब तो ये भी नहीं सोचा था मैंने कि मैं कभी योगा टीचर बनूंगी, तो ये मैंने ढूंढा, मुझे मिला।

0: नहीं। अच्छा। जब मैंने अपना शुरू किया योगा तो मैंने ऐसे मेरा रैंडम ही शुरू हो गया था। मैंने खुद के लिए एक्चुअली योगा सीखा था। मेरे को था कि मुझे पोजेस आइडियल क्या होता है पोजेस का
1: जी।
0: ये सीखने के लिए मैंने योगा सीखा था
1: जी।
0: फिर ये सीखने के लिए मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग भी कर ली। फिर योगा टीचर्स ट्रेनिंग जब हो गई तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मैंने एक एक स्टूडेंट को पढ़ाया सिखाया। वो बार बार बोलता था कि यू शुड टीच मोर पीपल, आप अच्छा सिखाते हो। और वो कहता था कि मैं इतनी सारी वरीज के साथ आता हूँ, जब मैं यहां से जाता हूँ तो सब छोड़ के जाता हूँ। ये सब मतलब एक से मैंने कई लोगों को किया। फिर उसके बाद मुझे था कि इतनी सारी चीजें होती है ना जो मैं नॉर्मल योगा क्लासेस में नहीं बता पाती हूँ। और फिर एक बॉडी माइंड कनेक्शन, और मैंने इतनी सारी चीजें बीच में पढ़ भी ली, उसकी वजह से फिर मुझे लगा कि मैं योगा रिट्रीट, अपनी योगा रिट्रीट करती हूँ। तो फिर जब मैंने इतनी सारी चीजें करी देखी तो फिर मैंने फिर ये कैलगरी वाली रिट्रीट का जन्म हुआ। इसमें भी एक और चीज था, जब मैं ये अपनी एक इंडिया की टीचर के साथ करना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: वो इंडिया में हर तीन महीने में रिट्रीट करती हैं।
1: अच्छा।
0: और बहुत अच्छी, मतलब मैंने जब उनसे पहली बार बात करी तो वो उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें बताई और मुझे था कि मैं उनकी योगा रिट्रीट में जाऊंगी, मगर टाइम नहीं वर्कआउट हुआ। फिर पता चला उन्हें कैनेडा में आके करने का बहुत मन है, तो हमने बोला चलिए हम साथ साथ कर लेते हैं। तो उनको आना था, फिर वो नहीं आ पाई और उनके आने की वजह से इस रिट्रीट का जन्म हुआ। और फिर यही फिर और था कि मैंने कैलगरी में ढूंढा था तो मैंने कैलगरी में करने की सोची और फिर ये हमने साथ में मिलके करा। सारा ब्रेन मैंने उनका, मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि ये करो ये करो ये करो, तो इसमें काफी सारा इनपुट उनका है। तो लाइक विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर हर और मेरी खुद की पढ़ाई और उनका इनपुट दोनों मिला करके फिर ये इस रिट्रीट का जन्म हुआ। अब इस रिट्रीट में होगा क्या, 3 दिन तो आप योगा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या क्या कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले ना, जैसे ही आप वहां पे आएंगे तो आपको लगना चाहिए कि ये जो जगह है ना ये मेरे लिए बनी है। क्योंकि आज आप किसी से भी बात करते हैं ना, बहुत फिल्टर लगा लगा करके करते हैं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। फिल्टर हमेशा लगा होना चाहिए। देखिए फिल्टर लगना होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस फिल्टर में आप अपने आप को खोए मत। मैं भी फिल्टर लगा के बात करती हूँ, मैं किसी को भी कभी बुरा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानती कि उसकी क्या सिचुएशन है। मगर उस फिल्टर को लगा करके भी आप ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो मेरी योगा रिट्रीट में वही होगा कि आप फिल्टर को लगा करके ऑनेस्ट होंगे। अपने आप से ऑनेस्टी लेनी है। तो सबसे पहले बहुत बार हम इतना भागते रहते हैं ना कि खुद से ऑनेस्टी हम भूल जाते हैं। हम कुछ के जो हम अंदर से होते हैं और जो हम बाहर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे लोग मुझे कैलगरी में जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है कि मैं आज 20 साल से अपनी लॉस्ट मदर के लिए ग्रीव करती हूँ। तो कोई नहीं जानता इस बात को। तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये प्लेस उनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा जहां पे वो हंस सकेंगे रो सकेंगे। और कैसे, इन दोनों, हंसना रोना दोनों पार्ट है आपकी लाइफ का, दोनों के बीच में ब्रिज कैसे करेंगे, तो ये करेंगे। और इसको योगा से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, योग निद्रा कर सकते हैं। किस तरह अपनी फीलिंग्स को कहाँ पे रेस्ट करना है वो कर सकते हैं। तो ये 3 दिन में बस आपको यही सीखने को मिलेगा।
1: तो इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे?
0: आप 4 बजे, पार्टिसिपेंट्स 4 बजे आएंगे फ्राइडे को, सितंबर 18 को, और 19th की रात 20th को 11 बजे जाएंगे।
1: अच्छा, तो यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा उस जगह पर। अच्छा,
0: बस तो तभी आप पॉज लेंगे ना, नहीं तो फिर घर गए फिर वही खाना बनाना ये करना वो करना। यहाँ पे कंप्लीट पॉज, टू लिव इन नाउ, ऐसे होगा।
1: तो उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारे इस प्रोग्राम में है?
0: हाँ जी।
1: ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, एक उसको ऑर्गेनाइज करना भी, क्योंकि लोगों की अपनी एक वे ऑफ लिविंग होता है, उसको इकट्ठा करना और उनको सामान्य रूप से लेके आना और सबके साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। तो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज फॉर यू ऑल्सो।
0: मेरे लिए है लेकिन फिर अगर चैलेंजिंग नहीं है तो फिर वर्थ नहीं है ना
1: क्या क्या बात है और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी आज तक ऐसा सुना भी नहीं कि कैलगरी में ऐसा कोई प्रोग्राम

0: हुआ है, मे बी मेरी मेरे मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन जितना मेरे जितना लोग मैं लोगों से मिलता हूं या जानता हूं, कभी मेरे सामने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं आया जिसके अंदर आपको 3 दिन रुकना पड़े कहीं पे। ठीक है, आप सुबह आए शाम को चले गए 1 दिन का या मैक्सिमम 2 दिन का, लेकिन उसमें भी आप घर चले जाते हैं और अगले दिन फिर आके उसको एंजॉय करते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ तो आपको 2 रातें रुकना ही पड़ेगा।
1: हाँ जी।
0: So, दोस्तों एक बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम होने जा रहा है कैलगरी के अंदर, क्योंकि हमने इतने सालों में ऐसा नहीं सुना। तो इट्स अ वेरी बिग इनिशिएटिव एंड वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अगर आपके पास वीकेंड का समय है तो आप जरूर यहां पे पहुंचें और योग रिट्रीट में अपने आप को शामिल करें। आरंभ, अनवाइंड, अनलर्न, रीलर्न इसका मेन मोटिव है। इसके अंदर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ऑल लेवल्स ऑफ योग क्लासेस इंक्लूड्स सन सैल्यूटेशन फ्लो, रोप योगा, चैंट्स, चक्रा हीलिंग, हथा योगा, योगा निद्रा, वीगन लंच एंड बेवरेजेस विल बी गिवन। तो अगेन शाम को 4 बजे आपने 18 सितंबर को आना है और 20 तक आपने वही रहना है। तो 20 दोपहर में आपकी छुट्टी होगी वहां से। तो ये कहाँ होने जा रहा है आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और क्या फी है इसकी?
1: ये बोमोंट में हो रहा है, मेरे घर से 5 मिनट दूरी बोनस के पास जगह है, एकदम रिवर के पास में है ये।
0: अच्छा।
1: बिसाइड्स रिवर है आप कह सकते हैं,
0: जो इसमें एड्रेस लिखा हुआ है 6612 बो क्रेसेंट नॉर्थ वेस्ट।
1: हाँ जी,
0: क्या बात है जी।
1: तो वहां पे हो रहा है
0: जी।
1: मैंने उसको पास में इसलिए कराया क्योंकि मेरे को था कि कैलगरी में होना चाहिए, लाइक एक्सेसिबल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट
0: जी।
1: मेरी हर चीज मेरे खुद के चैलेंज से शुरू होती है, क्योंकि मैं नहीं जा पाती थी तो मैंने उसको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास रखा। तो वहां पर आना है, वहां से मेरा स्टूडियो 5 मिनट पे है जहां पे मैंने रोप वॉल योगा, एरियल योगा सारे का वो कर रखा है। तो वहां से मेरे योगा स्टूडियो में जब जाना होगा रोप वॉल योगा क्लास करने के लिए, लटकने वाली जो मैंने अभी दिखाया आपको तो वो वाली क्लासेस वहां होंगी। एरियल क्लासेस का भी मेरे पास है, तो एरियल क्लासेस सिल्क पे होती हैं, बहुत अच्छा, जिसकी बैक एकदम अकड़ जाती है उनकी और उनको नेक प्रॉब्लम है तो वो इन्वर्शन नहीं कर सकते, वो हेड स्टैंड नहीं कर सकते, तो उनके लिए एरियल योगा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बैक को डीकम्प्रेस करता है, बैक को खोल देता है। फिर वो मतलब एक वो भी होता है जब बोन्स आपकी ऐसे साथ में सिकुड़ती हैं तो कंप्रेस करती हैं तो दर्द करती हैं, तो फिर वो ऐसे जब खुलती हैं तो बहुत अच्छा सा फील कराती हैं। तो उस तरह के सारी चीजें मेरे घर में है, तो वहां पे मेरे स्टूडियो में ला करके मेरे स्टूडियो को यूज करके फिर वापस वहां जाएंगे। तो इसमें आप बाहर निकले, सनलाइट का एक्सपोजर हुआ और वॉकिंग करके वापस गए तो आपके पैरों लपटे वॉक किया, तो सब एक कंप्लीट आपको पैकेज मिलेगा वहां पे।
0: क्या बात है, और क्या फी है इसकी, और कैसे हम लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं?
1: इसकी फी है $750 और रजिस्टर करने के लिए आप मेरे को पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं या bookretreat.com करके, वहां पे मैंने रजिस्टर कराया है, वहां पर जाकर के कर सकते हैं।
0: तो अगर मैं फोन नंबर जो आपके पोस्टर में है कि 5879692258।
1: हाँ जी।
0: और दोस्तों जो अगर आपको ईमेल चाहिए तो ईमेल है info@yogastudio.ca है, और जो वेबसाइट है मनु जी की वो है www.yogstudio.ca। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग ये प्रोग्राम होने जा रहा है, आप सबसे ये गुजारिश है आपके पास टाइम निकालिए, ये नहीं कि टाइम है या नहीं, लेकिन अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए। और जैसे कि मनु जी ने कहा कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा अगर आपको किसी भी तरह की कोई, आपने अपना दिल खाली करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को अगेन रिज्यूविनेट करना है, तो आई थिंक योग से बड़ी चीज कोई नहीं है। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में, आप कोई भी वेद उठा लें, उन सब में योग का ही जिक्र है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहां तक पहुंचे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने इनको बहुत अच्छी तरह से और डेवलप किया है, डिफरेंट तरह के योग्स आ गए हैं, और जैसे कि मनोज जी ने कहा कि तरह तरह के योग आपको इस पूरे जो 3 दिन का कोर्स है इसमें भी दिया जाएगा, ताकि आप उसको एंजॉय कर सकें और जो अपनी बॉडी की कुछ इश्यूज हैं उनको मनोज जी के साथ डिस्कस करके उसका निवारण कर सकें।

0: धीरे वो ठीक हो सकता है. तो मनोज जी, $750 इसकी फीस है. दैट इंक्लूड्स योर बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड फूड,
1: सब कुछ
0: जी.
1: और इसमें और भी फीचर्स हैं, लाइक आयुर्वेद मसाज. जब एंग्जाइटी वगैरह होती है तो मसाज बहुत हेल्प करता है. शिरोधरा मसाज करके आयुर्वेद का एक मसाज है, आयुर्वेदिक नाड़ी पल्स चेक. और मेरी खुद की टीचर जिनसे मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख रही हूँ, और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन भी इसमें ऑफर कर रही हूँ. तो मेरी अपनी टीचर वो भी वहाँ पे एक मेडिटेशन का सेशन देंगी. तो ये मेडिटेशन सेशन कॉम्प्लीमेंट्री है. मैंने मैंने खुद से ग्रीफ फील किया है, तो मैं जानती हूँ कि 20 साल तक किसी चीज को रखना, झेलना उसको बिना किसी मतलब ऊपर से फंक्शन करते रहना, अंदर से कुछ और होना, वो सब. तो एक मेरे एक ग्रीफ एक्सपर्ट भी मेरे साथ है. वो ग्रीफ नहीं बताएंगी, लेकिन वो ओवरऑल इमोशंस आपके को कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, वो बताएंगी. और आपको बहुत आश्चर्य होगा जान करके कि आप किस तरह से रहते हैं, किस तरह से सोचते हैं, उस तरीके से आपको दर्द होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस क्यों होते हैं, ये सारा कनेक्टेड है.
0: क्या बात. तो दोस्तों, मैंने भी एक कोर्स किया था जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस. एक बहुत ही आई ओपनिंग कोर्स था कि आप जब किसी से बातचीत करते हैं तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और किस तरह के आपके डिसीजंस है लाइफ के अंदर आपकी इमोशंस की वजह से बाहर आते हैं. तो जरूर आप इसमें हिस्सा लें. तो योग्स रिट्रीट होने जा रहा है 18 से 20 सितंबर. अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल करें 5879692258. ईमेल है info@yogstudio.ca. वेबसाइट है www.yogstudio.ca. मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे लिसनर्स को. बिफोर वी एंड टुडेज कन्वर्सेशन, क्या मैसेज है आपका लिसनर्स के लिए?
1: आप आइए, देखिए और अपने लिए एक ऐसा एनवायरमेंट में अपने आप को रख, लाइक एक उस मोमेंट में रहिए. आप या तो आगे रहते हैं या पीछे रहते हैं, तो एक बार के लिए उस मोमेंट में क्या, एक मोमेंट में कैसे रहते हैं, प्रेजेंट में कैसे रहते हैं, उसको फील करके देखिए.
0: क्या बात है. तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम 94.7 FM पर. एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. जाइए कहीं नहीं, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद.
2: रहंदिया इंश्योरेंस की बहुत अहमियत है. किसी भी तरह की इंश्योरेंस ले पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो. सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू. ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन. होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो.
3: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी. हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर. मयंक भटनागर जी 6477022023 647-702 वी दे.
4: लाइसेंस नंबर 10394.
5: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो. किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे. साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण. ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते. पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां. पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो. तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी. पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार.
6: ग्रोसरी खरीदण लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर. ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ

रखें। अगर आपके घर में कोई एल्डरली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जिनको केयर की जरूरत है, तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें वाईवाईसी होम केयर और उनकी सर्विसेज के लिए आप कॉल कर सकते हैं 5825760983। वीरपाल कौर टाट जी आपके लिए बहुत अच्छी सर्विसेज लेके आती हैं वाईवाईसी होम केयर। ओएसिस स्माइल मेडिकल is now open in Sunridge area of Northeast Calgary. They have a team of experienced doctors ready to care for you. No need of appointment. New patients are also accepted. Unka phone number 5876174696. Mercedes-Benz Country Hills, located in Northeast or one of the largest Mercedes dealership in Canada. Aap unke शोरूम में जाएं अगर आप ये अपनी ड्रीम कार खरीदना चाहते हैं। गौरव शर्मा जी, उनका फोन नंबर 4039036757। पंजाब इंश्योरेंस, इफ यू आर लुकिंग फॉर रिलायबल इंश्योरेंस सर्विसेज, कॉन्टैक्ट हरपिंदर सिद्धू जी, लवप्रीत कौर सिद्धू जी एट पंजाब इंश्योरेंस, फोन नंबर 4034043500। मदर इंडिया रेस्टोरेंट, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन के लिए सिटीस्केप प्लानिंग में खुल चुका है, 24 घंटे ये खुला रहता है सातों दिन। और अगर आपको डाइनिंग करना है, टेक आउट करना है, डिलीवरी करवानी है बहुत अमेजिंग फूड की, तो फोन नंबर है 4039367777। पिक्सल फोटो स्टूडियो लोकेटेड इन सवाना बाजार ऑफर्स फोटोज फॉर जस्ट पासपोर्ट ऑफ फोटोज फॉर जस्ट $7। आप उनको फोन कर सकते हैं 4039470060 पर।

0: हमारे स्टूडियो में और फोन के थ्रू जुड़े हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या क्या इस दुनिया में चल रहा है। शकील भाई, बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में।
1: जी अमरा जी, थैंक यू सो मच। हम आपने सुनने वालों के साथ फोन लाइन पे शरीक हैं
0: जी,
1: और आज हम पहले गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर कैलगरी में जो आज बाई इलेक्शन हो रहा है
0: जी,
1: अल्बर्टा असेंबली का
0: जी,
1: तो उससे हम बात करेंगे कि आज जो है 14 सितंबर है और कैलगरी शाह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर एक बाई इलेक्शन जिमनी इंतखाब जिसे हम कहते हैं
0: जी,
1: वो होने जा रहा है और आज शाम जो है उसकी पोलिंग 8 बजे बंद हो जाएगी।
0: अच्छा।
1: तो यहाँ दो कैंडिडेट हैं
0: जी,
1: एक है यूसीपी के माइक डैरी
0: जी
1: और जो एनडीपी के हैं काइल कैंबल
0: जी,
1: ठीक है, और भी जो है लिबरल के जॉन रोगवीन है, एक टोरी पार्टी के कैंडिडेट है उनका भी नाम काइल ही है
0: जी,
1: लेकिन जो मेन मुकाबला जाहिर है वो एनडीपी और यूसीपी के कैंडिडेट्स में है
0: जी।
1: और हमने अपने सुनने वालों को ये भी बताते चले कि ये सीट जो है जो साबिका एमएलए थी और एनवायरमेंटल मिनिस्टर थी अल्बर्टा की रेबेका
0: शुल्ट्स जी,
1: तो वो 2019 में यहाँ से जीती थी और 2023 के इलेक्शन में यहाँ से जीती थी इलेक्शन
0: जी,
1: बड़ी भारी तादाद में वोटों के जरिए
0: जी।
1: तो वो पिछले इस साल के शुरू में स्टेप डाउन हो गई थी अपनी निजी मसरूफियात की वजह से, तो ये सीट खाली हो गई थी
0: जी,
1: और यहाँ पे फिर नॉमिनेशन हुई और यूसीपी की नॉमिनेशन जो है माइक डैरी ने जो है जीती। तो ये रेफरेंडम सॉरी ये जो इलेक्शन है ये बाई इलेक्शन
0: जी,
1: इसकी एडवांस पोल शुरू हो गए थे
0: जी
1: पिछले मंगल से हफ्ते तक
0: जी,
1: और परल इतवार के दिन वक्फे के बाद आज जो है ना मेन पोलिंग है, पोलिंग डे है, तो रात 8 बजे तक ये पोलिंग होगी और उम्मीद है कि 10:30 बजे के करीब हमें जो है ना फाइनल या करीब करीब जो है ना विनिंग सिचुएशन जिस जो भी कैंडिडेट की होगी वो नजर आना शुरू हो जाएगी।
0: क्या बात है सर, तो ये जो बाई इलेक्शन है ये आज होने जा रहा है, हो रहा है दोस्तों कैलगरी शॉ का, तो इसका जो रिजल्ट है वो आज अनाउंस हो जाएगा शकील भाई?
1: जी उम्मीद तो है कि क्योंकि बाई इलेक्शन में आमतौर पर बहुत ज्यादा वोट नहीं पड़ते
0: जी,
1: लेकिन बगैर लगता है कि यूसीपी के कैंडिडेट जो है माइक डैरी
0: जी
1: वो उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और जो है वो जो है किसी भी जो है अपना किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार नहीं होंगे
0: जी,
1: लेकिन उम्मीद यही है कि क्योंकि आमतौर पे बाई इलेक्शन में इतने वोट नहीं डलते
0: जी,
1: और एडवांस पोलिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा वोट डाले गए हैं दोनों पार्टियों के लोगों की जानिब से
0: जी,
1: तो उम्मीद है कि आज रिजल्ट कोई 10:30 बजे के दरमियान
0: जी
1: सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अगर फाइनल रिजल्ट नहीं भी आया
0: जी
1: तो जो जो फैक्टर है कि भाई कौन सी पार्टी लीड कर रही है, कैंडिडेट जीत रहा है
0: जी,
1: तो वो हमें पता चल जाएगा।
0: अच्छा, क्या बात है। शकील भाई, ये तो हो गया बाई इलेक्शन का, लेकिन एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है इस समय, वो है अल्बर्टा डिसाइड्स, जो कि रेफरेंडम को लेकर काफी लोगों के साथ लोगों के बीच में एक कश्मकश चल रही है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने जो हमारे कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है पियर पॉलियर उनसे भी उनकी जो स्टेटमेंट सुनी कि आप लोगों को यही वो कह रहे हैं कि इस तरफ मत ध्यान दें, और क्योंकि ये अल्बर्टा अपने ही तरीके का सूबा बनने जा रहा है या वो ऐसे रेफरेंडम कर रहा है, तो उनकी सीधी जो कह सकते हैं स्टेटमेंट थी वो हमारी ऑनरेबल प्रीमियर को लेके थी कि भाई वो काहे को इस तरह की बातें कर रहे हैं अल्बर्टा को अलग करने से कनाडा के जो हमारी कंट्री है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और थोड़ी सी रोशनी डालिए ताकि हमारे लोग जो लिस्नर्स हैं उनको थोड़ी क्लैरिटी हो सर।
1: अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये जो पीएफ पॉलिया की जो आपने बात कही है
0: जी
1: वो मैं उस पर थोड़ा सा भी बात कर लूं। देखिये वो फेडरल पार्टी का लीडर है
0: जी,
1: ठीक है, वो बिल्कुल वो तो किसी भी शक्ल में इस रेफरेंडम की हिमायत का ऐलान ही नहीं कर सकते
0: जी,
1: ठीक है, अगर वो इसकी रेफरेंडम की हिमायत का ऐलान करते हैं कि वो सेपरेट हो जाए अल्बर्टा
0: जी,
1: तो उनकी पूरी पार्टी और वो खुद जो है ना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे इसी हवाले से कि वो फेडरल पॉलिटिक्स करते हैं
0: जी,
1: तो उनकी पार्टी का मोटिव यही है कि भाई पूरा कनाडा एक है
0: जी,
1: ठीक है, सब जो यूनाइट होके सूबे, तो वो तो किसी भी शक्ल में किसी भी सूबे की अलहदगी के लिए हिमायत का ऐलान ही नहीं कर सकते
0: जी,
1: या उसके लिए रजामंदी या निम रजामंदी का इजहार नहीं कर सकते
0: जी,
1: तो ये पहले क्लियर होगी। उन्होंने तो हमेशा ही मुखालफत करनी है, वो जो मौजूदा एनडी यहाँ पे जो अल्बर्टा में जो यूसीपी है
0: जी,
1: वो उनकी अलाइज पार्टी जरूर है, लेकिन इसे जाहिर है वो फेडरल पॉलिटिक्स करते हैं तो वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते

0: किसी एक सूबे को कि अलहदगी की या सेपरेशन की या कोई भी नाम दे उसको
1: जी
0: हिमायत करें। तो ये तो हो गया आपका पहला उसका
1: जी।
0: दूसरा अब हम ये आते हैं रेफरेंडम जो गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने और अल्बर्टा ने जो ना ये प्लान किया है
1: जी
0: क्या अक्टूबर के 19 तारीख को ये रेफरेंडम होगा अगले महीने
1: जी।
0: और इसके अंदर जो है ना 10 सवाल रखे जाएंगे
1: जी।
0: 1 से 9 तक सवाल में जो है वो यस और नो में आपने जवाब देना यानी वोटर्स ने, और जो 10वां सवाल है वो एक्चुअल बेस सारा उसके ऊपर ही करता है कि रेफरेंडम करके क्या आप कनाडा के साथ रहना चाहते हैं या आप कनाडा से जो है ना अल्बर्टा जो है सूगा रहे कनाडा का, या आप इसको जो है उसकी जो एक्चुअल वर्डिंग है
1: अच्छा
0: वो कुछ इस तरह से है कि जनाब जो है आप जो सूरत हाल है कि आप कनाडा के साथ रहना चाहिए अल्बर्टा को, या आप जो है अल्बर्टा गवर्नमेंट को इजाजत देते हैं कि वो फेडरली इसके नताइज के इस शक्ल में जो भी रिजल्ट आता है वो जो है अपना निगोशिएशन फेडरल गवर्नमेंट के साथ इख्तियार करें। तो अब इसके दो इस जो 10वां सवाल है उसके दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आप जो है ना रिमेन पार्ट ऑफ अल्बर्टा
1: जी
0: ठीक है, और दूसरा ये है कि भाई अल्बर्टा शुड रिमेन ए प्रोविंस ऑफ कनाडा
1: जी
0: ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा शुड कमेंस द लीगल प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड अंडर द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू होल्ड ए बाइंडिंग प्रोविंशियल रेफरेंडम ऑन वेदर और नॉट अल्बर्टा शुड सेपरेट फ्रॉम द कैनेडा। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है ना वो आपको चूज करना होगा कि जी आपने यानी वोटर्स ने कि भाई क्या गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा को वोटर इजाजत देते हैं
1: अच्छा।
0: कि वो जो रेफरेंडम के रिजल्ट की शक्ल जो भी आएगी उसमें वो निगोशिएशन स्टार्ट करें लीगल निगोशिएशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा ठीक है, या इसका जो पहला ऑप्शन है ए उसके अंदर ये कि भाई अल्बर्टा शुड रिमेन ए पार्ट ऑफ कनाडा ठीक है। और तो ये इसका जो मेन वो है, लेकिन इसके अंदर जो 1 से 9 तक सवाल है ना
1: जी
0: वो बड़े कंसर्निंग है और वो जिसपे जो है अपोजिशन अपनी जाहिर सियासत भी कर रही है और हुकूमत अपना मौकिफ या अपना जो नुकता नजर या पर्सपेक्टिव पेश करती है वो ज्यादातर जो सवाल जवाब है वो कुछ जो है ना पब्लिक रिलेटेड ही है यानी वोटर्स या रेजिडेंट्स रिलेटेड है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा चाहती है कि जो लोगों से पूछा है कि भाई कंट्रोल ओवर इमिग्रेशन हमारी जो लोकल इमिग्रेशन यानी प्रोविंशियल इमिग्रेशन है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा का ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए
1: जी।
0: इसी तरह जो प्रोविंशियल फंडेड जो दूसरा वो है उसके अंदर सवाल एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोविंशियल फंडेड प्रोग्राम डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा इंट्रोड्यूस ए लॉ मैंडेटिंग दैट ओनली कैनेडियन सिटीजन परमानेंट रेजिडेंट एंड इंडिविजुअल विद अल्बर्टा अप्रूव इमिग्रेशन स्टेटस विल बी एलिजिबल फॉर प्रोविंशियल फंडेड प्रोग्राम सच एज हेल्थ केयर एजुकेशन एंड। तो ये एक सवाल इसके अंदर है
1: ठीक
0: है। इसी तरह से रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट का एक सवाल है। इसी तरह से चौथे नंबर पर फी और नॉन परमानेंट रेजिडेंट अगर आप स्कूल कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं कि नॉन परमानेंट रेजिडेंट या वो मेडिकल सर्विसेज अवेल करते हैं तो वो उनको पे करना पड़ेगा। तो ये सवाल है कि आप आजादी है कि वो पे करें। इसका जो मतन है जो एक्चुअल वर्डिंग है एज्यूमिंग डेट ऑल कैनेडियन सिटीजन एंड परमानेंट रेजिडेंट कंटिन्यू टू क्वालिफाई फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन एज दे डू नाउ डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा चार्जिंग ए रीजनेबल फी फॉर और प्रीमियम टू इंडिविजुअल्स विद ए नॉन परमानेंट इमिग्रेशन स्टेटस लिविंग इन अल्बर्टा और देयर एंड देयर फैमिलीज यूज ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन ठीक है। ये कि भाई जो जिनके पास परमानेंट स्टेटस है वो तो सब अलाउ है एज यूजुअल जैसे चल रहा है
1: जी।
0: लेकिन जिनका परमानेंट स्टेटस कोई नहीं है यहाँ पे वो भी मेडिकल केयर और जो एजुकेशन है वो हासिल कर रहे हैं तो क्या वो या उनकी फैमिली क्या आप इजाजत देंगे इसका भी वो यस और नो में है। फिर प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का एक इसके अंदर क्वेश्चन है पांचवा जी जब आप इलेक्शन के अंदर जाए तो आपसे पूछा जाए कि जी प्रूफ डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा इंट्रोड्यूसिंग ए लॉ रिक्वायर्ड individual to provide proof of citizenship such as

0: passport, birth certificate, or citizenship card to vote in Alberta provincial election. ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हमने देखा गया है कि जनाब जो है वो एफिडेविट की बुनियाद के ऊपर या ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो वोट दिया जा सकता है. तो ये एक लाभ बनाया जाएगा कि भाई आप वो मांग सकते हैं. इसी तरह जो इसका जो क्वेश्चन 6 to 9 है वो कुछ रिफॉर्म्स हैं जो करना चाहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा में जो जजेस का तायुन है, ये जो जिसको हम कहते हैं कि अपॉइंटमेंट है, उसको जो है ना वो पूछा गया है कि डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ अदर विलिंग प्रोविंसेस टू अमेंड द कैनेडियन कंसल्टेशन टू हैव प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड नॉट द फेडरल गवर्नमेंट सिलेक्ट द जस्टिस अपॉइंटेड प्रोवाइडिंग किंग बेंच एंड अपील. तो इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि भाई क्या अल्बर्टा गवर्नमेंट को इख्तियार दिया जाएगा कि भाई ये जो है आप या और सूबों के साथ मिलकर कि वो पूछ सके फेडरल गवर्नमेंट से कि भाई जो जजेस हम अपॉइंट करते हैं उसका इख्तियार जो है वो हमारे पास यानी प्रोविंस के पास होना चाहिए.
1: जी.
0: इसी तरह सेनेट के हवाले से एक सवाल है कि भाई डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ अदर विलिंग प्रोविंसेस टू अमेंड द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एबॉलिश अन इलेक्टेड फेडरल सेनेट. तो भाई वो दूसरे सूबों के साथ मिलकर जो ख्वाहिशमंद हो इस काम पे उनके साथ चलने में कि इसको एबॉलिश किया जाए, यानी कि हमारी जो सेनेट का अनइलेक्टेड बॉडी है, क्योंकि हमारे कानून जो है वो फिर सेनेट में जाके बात हुआ फंस जाते हैं. तो एक सवाल ये. इसी तरह से आठवां सवाल भी कोई ऑप्टिंग आउट ऑफ द फेडरल प्रोग्राम एंड विद फंडिंग डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑफ अदर प्रोविंशियल प्रोविंसेस विलिंग टू अमेंड द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ प्रोविंसेस टू ऑप्ट फेडरल प्रोग्राम डेट इंट्रूड ऑन प्रोविंशियल ज्यूरिडिक्शन, यानी कि फेडरल कवानीन को चैलेंज किया जा सकता है प्रोविंस के अंदर, प्रोविंस को इख्तियार मिलना चाहिए जैसे वो फेडरल फंडिंग हो. तो इस तरह के जो ना ये टेक्निकल सवाल भी है इसके अंदर और रेगुलर सवाल भी है. तो ये
1: शकील
0: भाई, इसी तरह मैं एक आखिरी एक इसमें बताऊं जो सवाल नंबर 9 है. डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा वर्किंग विद द अदर गवर्नमेंट ऑफ विलिंग प्रोविंसेस अमेंड द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बेटर प्रोटेक्ट प्रोविंशियल राइट्स फ्रॉम द फेडरल इंटरफेरेंस बाय गिविंग प्रोविंस लॉ डीलिंग विद द प्रोविंस और शेयर्ड एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिडिक्शन ऑन प्रायोरिटी ओवर फेडरल. तो ये कि फेडरल प्रोविंस जो फेडरल लॉ है उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए प्रोविंसेस को कि वो उसके ऊपर जो है ना अपने हिसाब से काम कर सके. तो ये इस तरह के 1 से 9 तक हैं जिसमें 9 हमने यस और 9 करना है. जो 10वां है सवाल जो मेन है तो उसके अंदर जो है ना आपको 2 ऑप्शन दिए हुए, किसी एक को आपने टिक करना होगा, ये चेक करना होगा.
1: जी
0: अब आप कहिए. सॉरी
1: मेरे को ये था कि आप थोड़ा सा ये बताएं, आखिरी 2 मिनट रह गए हमारे पास, कि ये रेफरेंडम जो है ये मतलब कि मेरे को समझ नहीं आ रहा हम लोग कैनेडा से अलग क्यों होने जा रहे हैं. अगर हम लोग बात करते हैं कि भैया हमारी गवर्नमेंट सुनती नहीं है हमारे प्रोविंस की, तो और कोई भी वे निकाला जा सकता है कि बस सिर्फ अलग ही हो जाओ तभी हम लोग हमारी बातें सुनी जाएंगी?
0: नहीं, ये देखें अमृत जी, ये अलग होने वाला सिलसिला नहीं है. ये जहां तक एक जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझते हैं वो ये है कि अपनी आवाज ऑटवा तक पहुंचाया जाए. दूसरी इसमें खास बात यह है कि ये बाइंडिंग नहीं है, इसका रिजल्ट जो भी आए इससे किसी को रिजल्ट पे कोई वो नहीं होगा कि गवर्नमेंट पाबंद होगी. अगर अलहदगी पसंद ये सेपरेटिस्ट ये दे देते हैं अक्सरियत के साथ कि जी हम अलहदा होना चाहते हैं, तब भी अलहदा नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का ये जो रेफरेंडम एक्ट बनाया है वो पाबंद नहीं है कि वो जो रिजल्ट आए उसको कबूल करे. एक तो ये. दूसरा जो आपने पूछा कि भाई हम कोई और रास्ता नहीं है, बात ये कि जो यहाँ पे जो जिसको कहेंगे महरूमी अल्बर्टा की फेडरल गवर्नमेंट के साथ ये जो नाइतफाकियां या नाराजगियां हैं वो एक अपनी आवाज वहां तक पहुंचाने का एक जरिया रेफरेंडम बन गया है. और जो है फेडरल गवर्नमेंट को ये बात पता चले, यहाँ के लोगों की ये ख्वाहिश थी कि जब हमारे साथ बकौल शख्स है कि सुतेली माँ जैसा सलूक करती है फेडरल गवर्नमेंट, ये आउट हुआ तो हमें अपनी आवाज वहां तक पहुंचानी चाहिए. तो ये उसके लिए लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए और कोई जरिया नहीं होता. इस तरह के रेफरेंडम क्यूबेक में भी हुआ था, उसमें भी

0: दो मरतबा हुआ एक दस साल के वक्फे के बाद. तो ये जो ये आईनी तरीकेकार है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वे है. ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप बगैर उसके कहें. और ये ज़ाहिर है अल्बर्टा इलेक्शन, अल्बर्टा ने इसको पूरा इस पे वर्किंग की और दोनों साइड से यस और नो, यानी अलहदा होने वाले और कनाडा के साथ रहने वाले कोई 7 लाख से ज्यादा लोगों ने दस्तखत किए. ठीक है, तो ये जो भी रिजल्ट इसका आएगा उसकी आउटकम जो है ना वो गवर्नमेंट पाबंद नहीं है उस पर अमल करने की.
1: शकील भाई, मैं चाहूंगा कि अब किसी दिन फटाफट आप आए हमारे स्टूडियो में बैठ के, ताकि हम पूरे विस्तार पूर्वक इसके बारे में बातचीत करें, क्योंकि अभी हमारे पास अब आखिरी का एक मिनट रह गया तो अब ज्यादा बात हो नहीं पाएगी. लेकिन मुझे पता है आप काफी मशरूफ रहते हैं और काफी
0: जिम्मेदारियां हैं. बिल्कुल करेंगे और बहुत पूरा एक प्रोग्राम हम करना चाहेंगे
1: जी.
0: लोगों को बहुत छोटी छोटी बारीकियां, क्योंकि अभी तकरीबन 1 महीना है रेफरेंडम होने में
1: जी,
0: तो हम 1-2 प्रोग्राम इस पर करेंगे. बिल्कुल
1: ठीक है शकील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के टाइम देने के लिए. तो आपसे दोबारा बातचीत होती है सर.
0: थैंक यू.
1: तो ये थे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट शकील अहमद साहब, जिनको आपने सुना और जाना कि रेफरेंडम और बाकी जो आज का जो शोबे बाय इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी. सो आपसे विदा लेने का टाइम हो गया दोस्तों, तो आपसे मुलाकात होगी अगले सोमवार. जब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें और ऐसे ही मुस्कुराते रहें. थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट.
2: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.